0: 레이징은 로브나바 남다 따르타게 티츠근들라 차소니셰 지나 점고진난다가 철도진난다가 쇼춘진난다가 카르진난다가 더더긴나 단 돈나 차체그 노체는도 고나영 사차소소난 정구 요노가 니츠르테인이나 년통나스과 따따 나랑치 살름 크나르기지 고제 퇴지만 보요가 대변데 영랑근이 그렇게 사차소소 차소니셰 지나 영 가르창 되는데 이나 차르천 바브르 제니 양철고나스관다 따가영 이나 롱롱멍 츠고영 이나 예즈브라 당틀칸다이 권난딩이 튼드네 이나 영 다츠 중처 메소주가 라마 타무잡고 가랑 소 세만진지 츠즈난다가 라마드지 투즈난다가 나타 간다시노 그때도 고대치니
1: 오 야야야 돈돈 반단디 칠랑 응거 끝에니 셴나 오 다치기나 단디 디전테 오 롱사 니긴디 역사르지나 자크 남신 온다 근데 또 너 일들이 오다 알아그래 나 자크 체나 자크디 바론 근데 냠적 자가 송수 예고 오 드마인비다 칠랑 근데 단 조르노 자가 오다 지금 자동이나 자꾸 존치 어드마임비 다 조이촌나 지금 김코이 빙이오이나 자꾸 드마임비 깅이 쟁그다 맨치 어드그딘 코치서 장드즈가 약고즈게고 드마임비 어다 점총 어롱그 지금 요치 지금 사치 요나요 덕성즈가 약고즈게고
2: 아리
1: 어다 니와이나 다 지금 롱기 진댕기 지금 와치에고 도노 다 지금 카파트 지금 판스나 다 돈치 그 자럭드그드 녀츠즈가 약고즈이데 다 드마임비 ताला करेना चक मिचायना चक तुमाय बिताजी लावारा तचिन दोचिन ओतमज रोंगि चिन्यार सरा तेना जेना चिक दातोन नाचि तब दिनी ओ जेंग चिक चाना चि नेलानी ओ चिक तमज रे
2: तेरे तेरे
1: ओ दिमाय बिता चमचोन रोंग ओ चमरी गि गेम को तरते ओदा जायना जाय गि चालक तक चि करो दज ओ लकरत चि मेनजी गि चालक दे यो चि करो दिना यो शि इशन संदारे ओ दाग संबाय ना तां खोइन नोंग तान्यां का दे युरगुति अलग गुरे ता छरगु तमाय बिता लोंगो दे जग जोयों तो नो एकु ग ओ ता तमाय बिता छख सोमाज रे ता छु जाचा तक द सोमाज नु चिंगु ग क ओ ता चालग ज नोमु ज ओ छु नामु नि छु सखन जग रते एकु ग
2: अरे
1: ओ ता जवा ना ता ति जंत छु देंज क नोंग ता छु नि रे तो खुर जोयों छु टान ज ग तो एकु ग ওটা নিরাত হরকুতি আতে জি লাম থিগরা ওটা তমাই বেনি হরসা গজারা তয়ন জি নগি জি ইকুন দাম গুগ ওটা কারতি নিরাত মুখর কামে শন্ত না তা জি গরনি শগনি লিতারবি জালগ তয়ন জি টা জুজ ইকুজ ইকুগ তা খবর না জি চিকরেন তম ন খন জান না চক খন চাই না চক জি টা জুজ ইকুলি ইদলি ওটা জি গরনি অনিয়ান খালি তারতবে জুতয়ন শি গাচিনরে